जरा दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल माहेरवई, जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: छा अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो, पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो। वाइट एज ब्यूटी सोप, वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं चाहे खुश खबरी। चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 सां छित सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई जकच हम दग सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: 대박.
1: 신기 호, 또 아와지 신기 해. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sinki Awaaz.
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मैशियत सख्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. अमेरिकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया आहिनि. अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर ट्रम्प डोनाल्ड चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां. ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं. घरियल क़ौमुनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी. ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान. ख़ातमुल नबी हेडक्वार्टर्स जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा ख़िते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा. अमेरिका सां हमलनि में सहकार मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो.

0: इस्लामाबाद मार्च हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। हत्ता टैक्स, गुंडा टैक्स, जग्गा टैक्स जो लेवी की सूरत में है, ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है। लेवी का भत्ता अगर रहेगा तो फिर एहतजाज भी बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर ऐसा ना हो कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील हो जाए।
1: पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमात इस्लामी जो ट्रेन मार्च इस्लामाबाद तरफ रवान दवा। हाफिजुल नईम रहमान की अगवाणी में कराची मां निकतल ट्रेन मार्च जो नवाबशाह भिरया रोड रोड़ी ए बेन शहरन में इस्तकबाल। हाफिज नईम रहमान लेवी के नाले ते भत्तो वरतो पयो वे, पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के वापस वठनी पवंदी।

केपीके जे शहर शहीद थियल पाक फौज जे बिन अफसरन समेत छह जवानन जे जनाज़े नमाज पिशावर में अदा। जनाज़े नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर केपीके फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत। शहीद कैप्टन अबूजर फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शेराज नजीर ए बेन की जनाज़े नमाज अदा कई वही। ISPR मौजूब शहीद आफिसरन ए जवानन जे मरण की तदफीन अबाड़न इलाकन में फौजी एजाज से कई वी। गुजरियल दहशतगर्दन से मुकाबले दौरान पाक फौज ब आफिसर ए जवान शहीद थे हुआ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
5: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई। जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिला माजूरी।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामनी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
7: Hi.

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कानून मौजूद सब सहूलतूं मिली रही आहिनि. PTI जी अक्सरियत खे ख़बर नाहे त लॉन्ग मार्च छो थी रहियो आहे. सूबनि वारो मामिलो बि तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे. नवां सूबा ज़रूर ठहंदा. ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे. मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया. अमेरिकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां. ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं. गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी. ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान. ख़त्मुल नबिया हेडक्वार्टर्स जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा खिते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा. अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो. बलूचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन. हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो. फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो. हथियार हथ कया विया. शहीद थियल पाक फ़ौज जे ॿिनि आफ़िसरनि समेत छह जवाननि जी जनाज़े निमाज़ पिशावर में अदा कई वई. जनाज़े निमाज़ में घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, गवर्नर KPK फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ऐं ॿियनि जी शिरकत. शहीद कैप्टन अबूज़र फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट जनरल शीराज नज़ीर ऐं ॿियनि जी जनाज़े निमाज़ अदा कई वई. ISPR मूजिबि शहीद आफ़िसरनि ऐं जवाननि जे मड़नि जी तदफ़ीन अबाणनि इलाइक़नि में फ़ौजी एज़ाज़ सां कई वेंदी. गुज़िरियल ॾींहं दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले दौरान पाक फ़ौज जा ॿ आफ़ीसर ऐं जवान शहीद थिया हुआ. वरी वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो. अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर ताईं जारी रहंदी. 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो जा बचाव वारा फोड़ा पीआरिया वेंदा. इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तम कयो वेंदो. पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी. आलम समूरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि. पेट्रोलियम लीवी ख़िलाफ़ जमात इस्लामी जो कराची खां निकतल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो. मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव. सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमात इस्लामी जे अमीर जमायत हाफिज़ नेमुन चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमिल कयो आहे. हुकुमराननि खे लीवी वापसि वठणी पवंदी. कंदकोट भरसां रसालदार रोड ते हथियारबंदनि जी फायरिंग. पुलिस अहलकार शहीद. हथियारबंदनि पुलिस अहलकार ज़फर सिंधराणीअ खे गोलियूं हणी क़तल कयो. ज़रियनि मूजिबि भंगवार बिरादरी जे हथियारबंदनि पुलिस हथां मुबैना मुक़ाबले में नौजवान जे मारजण वारे पलान में पुलिस अहलकार खे शहीद कयो आहे.

ऐं बंग ॿारनि भरिसां ॿारनि जी ॻाल्हि तां जहिड़ो नौजवान क़तल लाश अस्पताल मुंतकिल जवाबदार फरार जलाल जी भरिसां ॻोठ वस्तड़ो में ॿारनि जी ॻाल्हि तां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े दौरान लठनि जा धक लॻण सबबि नौजवान जलाल सोलंगी मारिजी वियो। पुलिस जो चवण आहे त वाके जी जांच जारी आहे।

सदा शहर सिंध जे निज़ारनि ते लिखबो, मेहरान जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था, इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: मातली आसपास की अवाम लाइ खुशखबरी, मातली पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863160।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News.
3: इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे। उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोन अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें। इस दफा वंस फॉर ऑल कोई ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
4: इस्लामाबाद ते कहें भी चढ़ाई करण न लींदासीं। हिन भेरे विंस फॉर ऑल थींदो के पी जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे, बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रू मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो अफ़गानिस्तान सां। लागापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपया पेट्रोल महांगो न मिलंदो।
5: नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
4: घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवन सूबन वारी होड ते कायम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबन वारो मामलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। ईरान खे तबाह करणो आहे, मईशत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण वटां मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा ख़िते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो। बलूचिस्तान जे पंजकोर वारे इलाइक़े में फोर्स जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पंजकोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया।

शहीद थियल पाक फौज जे बिन ऑफिसरन समेत छह जवानों की जनाजे नमाज पिशावर में अदा कई वही। जनाजे नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर KPK फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत, शहीद कैप्टन अब्दुल फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शिराज नजीर ए बेन की जनाजे नमाज अदा कई वही। ISPR मौजूद शहीद ऑफिसरन जवानों के मरण की तदफीन बारह इलाकन में फौजी एजाज से कई वी। गुजरियल ढीह दहशतगर्दन से मुकाबले दौरान पाक फौज ब ऑफिसर ए जवान शहीद थे हुआ। वरे वजीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ्तिताह करे छो। अज का शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर तक जारी रही। 25 लाख का वधिक बारन के पोलियो का बचाव वारा फुड़ा पियारा वेंदा। इफ्तिताही तकरीब के खिताब कन्दे वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह समूरी दुनिया जिया पाकिस्तान में भी पोलियो खत्म कर वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कन्दड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कंदा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे ज़रिए स्टोर राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश

0: किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो
0: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252586
0: जी हा 2315525786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

जी आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हो, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन ये बात है कि भाई तुकाई मार लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे।

हालवाल देश कंप्यूटर क्रीम जो इस्तेमाल कयो जानिया ताई कोन कयो था बाबा वन्यो वन्यो जल्दी करिए थोड़ो

अच्छा भाई, मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना, वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं, तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ कहते हैं कि जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके। और हजारभा कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है, योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। फहीम भाई आपने लिंक शेयर कर दी है, ओके मैं आपका गाना लगाती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र किया करे। और निदली हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा, अब ये क्या सच है, लग तो रहा है। अच्छा फहीम भाई कहते दादा क्या सर खाले जुड़े जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई। और अनवर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आहे न मुर्कन सा सजायल ही जिंदगी जो पंद खुशिन जो गुलाब पियो मुर्के सजो हंद दुआ आहे तो हमेशा इं ही रहन आबाद कहीं खे भी न अचे कोई दिल ते बंद। सही बाबा सही बाबा। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिर्फ आज कोई अपनी पसंद का, चलिए AI का सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। कि पोस्ट पर चैट नहीं करो, आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं, ये बिल्कुल यही रीजन है, जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके तमा के भी चौथा भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है, मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, आप डी स्किन फेस वॉश यूज कर सकते हैं, डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे, तव्हांजे चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो ऐं तव्हांजे खूबसूरती में भी इज़ाफ़ो अची वेंदो।

वांगुर छॾियां पेर पो रखजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पो रखजां हलाए अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीबाबाद मोरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू और इंतज़ार भाके ते टॉपिक पढ़दा हया और शर्म ओकी ओकी जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस शो मैम आरजे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट वेठा शिकारपुर वारा माण्हू बि बार बार डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुल मूंखे इहा खबर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरो शोरो से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं।

नखरा कयो तव्हां खे बि फुल मोकल आहे पर पहिरियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ठीकु आहे पोइ तव्हां खे नखरा बि ठहंदा जी अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आवाज से आपने हमें ज्वाइन किया है जबरदस्त कंपेयरिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू खुश रहें आप भी और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द का पुछो तो बुधाए शादी ऐं जंग में केड़ो फर्क आहे शागिर्द एकदम जवाब दिनो उस्ताद महासरफ जंग में दुश्मन सा समझौतो करण जा कुछ मौका मिलंदा आहिनि पर शादी में को भी समझौतो नथो हले उते सिर्फ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करणी पवंदी आहे केडा त सतायल आहियो अला तव्हां सभु जी जी बिल्कुल आपने सही पहचाना निगत नाज आ चुकी है इंजॉय कीजिए निगत नाज को और मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम अदी सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चाहिए अल्लाह पाक तमाम के खुश रखे हमेशा मुस्कुराइंदा रहो माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब कंपेयरिंग गोठ आगा खान जतोई लाड़काने का मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सर जतोई तमाम भाव जो मोहब्बत प्रोग्राम के पसंद कर पाया डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारी खूबसूरती तमाम मर्द हजरा तमाम खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था फायदो हासिल करे सको था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो सुना सुना थी वन्यो।

अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है, गोठ जाम खान लगारी से अली रजा लगारी भाई। सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाइस है, सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श कोखर, खालिक लाशारे। सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल कर

0: साथ भेज दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। निधि कहती अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए, नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम, आपका जवाब मैंने देख लिया था।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow. Oh, Har Diya Josho, a product by Biocon.
2: अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे, उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोन अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें। वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
3: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण न ॾींदासीं, हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो। केपीके जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे, बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी गौरव वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं नथो थिए त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहनि लाइ बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो।
4: नए सुबुह वाला मामला जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
3: घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवनि सूबनि वारी होड ते क़ाइम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहं में विचोभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ख़ात्मुल नबिया हेडक्वार्टर्स जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा ख़िते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। अमेरिका साम्हूं हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो। बलोचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया। شہید تیل پاک فوج بن آفیسرن سمیت چھ جوانن جی جنازے نماز پشاور میں ادا کی وئی. جنازے نماز میں گھرو وزیر محسن نقوی، گورنر کے پی کے فیصل کریم، کور کمانڈر پشاور این ڈین جی شرکت، شہید کیپٹن ابو ذر فاروق، شہید لیفٹنٹ شہراز نذیر این ڈین جی جنازے نماز ادا کی وئی. آئی ایس پی آر موجب شہید آفیسرن جوانن جی مرن کی تدفین ابان علاقن میں فوج اعزاز سے کی ویندی. گزرل ڈی دہشت گردن سے مقابلے دوران پاک فوج با آفیسر جوان شہید. بڑے وزیر سندھ میں
5: آپ سن رہے تھے

खूबसूरत से लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं. ये डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं जनाब, और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं बल्कि हमेशा के लिए हसीन, खूबसूरत और पुरकशिश बन सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए. अच्छा, तो मर्द हजरात या फिर खवातीन, आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो भाई टेंशन की कोई बात ही नहीं बनती. यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, इजीली आप जो है हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने से मतलब ये कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो या फिर किसी भी तरह की आपकी स्किन हो, तो उसके ऊपर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग जो है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं. जैसे कि सिर्फ आपने दो रातें इस्तेमाल करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो आपको इतना प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा. सिर्फ दो दिनों में वाजे नताइज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं. और जदीद अज्जा से ये तैयार की गई है जनाब, जिसके अंदर आपको पता ही है कि विटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, फॉलिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है. ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है जनाब, ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो चमकदार हो जाए, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए, आपके चेहरे पर जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना वो खत्म हो जाए, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना रंगत बहुत ज्यादा डिम हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं. तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं. और डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसका इस्तेमाल करने के बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं. सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स डाले गए हैं ना, ये 2-in-1 फार्मूला बना देता है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को. इससे ये होगा कि भाई आपके चेहरे पर अगर आप ये नाइट क्रीम यूज करते हैं, ये है तो बेसिकली नाइट क्रीम है, लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है. जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, कोई बड़ी सी आपने ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और जनाब वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ दो रातों में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा. मैं तो चाहती हूँ आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपके चेहरे को चमकाने वाली और आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्ती खूबसूरती लाएगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान क्या बात है, हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करे थे. खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नहीं, नाम जो होता है ना वो नहीं होता, बल्कि अपनी जिल्द की सफाई, मुनासिब केयर और रोजाना की अच्छी आदत भी आपको खूबसूरत बना सकती है. अगर आप ऐसा ही ख्याल रखते हैं कि भाई चेहरे का ख्याल रखेंगे, रोजाना अपने चेहरे को डी स्किन फेस वॉश से हम जरा वॉश करते रहेंगे, क्लीन रखेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रोजाना हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जब आप ये प्रोसेस डेली बेसिस के ऊपर जब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत सा एहसास अपनी स्किन के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे भाई ये तो कमाल ही हो गया. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, ये दोनों चीजें आप साथ में यूज कीजिए. और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, हम क्रीमें नहीं लगाते, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, या फिर उन्होंने पहले क्रीमें लगाई थी, उन क्रीमों ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, और उस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा ये आ चुका है कि भाई क्रीमें तो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि क्रीमें अच्छी नहीं होती. जो खास करके लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रीमों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं. तो आप लोगों को ये मैं बताते चलूं कि जो क्रीमें होती है ना वो आपके चेहरे पर खूबसूरती लाने के लिए होती है, और खास करके जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन के फेस वॉश का यूज करते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर जो रंगत आती है, जो निखार आता है, जो खूबसूरती आती है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको मिल जाएगी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये चीज भी जरा आ जाती है. आप बोलेंगे कि भाई आप फायदे तो बता देती, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कैसे करना ये तो आप बताती नहीं है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है. ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ रॉकेट साइंस लगा लेनी है, आपने बस रात के टाइम जो है ना सोने से पहले एक काम करना है कि अपना फेस वॉश करना है. अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद सुखा लीजिए चेहरे को. ऐसा होता है ना, जिन लोगों के चेहरे की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड किया करें, जो वे फेस वॉश करने के फौरन बाद ही टॉवल से अपना
अपना फेस वॉश जो होता है ना फेस को सुखाने लग जाते हैं तो टॉवल का यूज मैं तो कहती हूँ कि भाई अपनी जिंदगी से जरा आउट कर लीजिए, खास करके अपने फेस को मत पोछा करें टॉवल से, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं, उससे फिर आपके चेहरे पर एक्नी जो है ना उसका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपने अंदर भी अपनानी होती है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है। तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी। आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट मिल चुके हैं। आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके चेहरे पर एक निखार होगा, एक ग्लो होगा और एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाज़े देख सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312-50-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-34 नी थोरा ग़लति हो 03-27

अच्छा हिकड़ी गाल याद अची वई पर छॾे सहाली कोन थी ॿुधायां मां अच्छा अगरि तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो यहां पर पैनल की जानिब आते हैं तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी बहुत ज्यादा वाले तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है वरियाम अली जतोई

भाई नेता मुझे समझ नहीं आता कि ये सिटी का नाम था ये या इंसान का नाम था. आई डोंट नो. बस लोग मैसेज कर देते हैं, मैं वैसा के वैसा पढ़ देती हूँ. इंतजार भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. इकबाल लाशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं. आपने टॉपिक का जवाब दिया है. ठीक है जी इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया. और अबू हनीफ अलबलोची कहते हैं मुमताज लाशारी का गाना सुनाए. मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे. और फरवा कहती हैं आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है दिल बच बच बच यू गानो बुधो सैया सैया. हाजिर हाजिर. और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है. भाई को वेलकम कहते हैं वीआईपी प्रोग्राम. थैंक यू जी थैंक यू. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयव कोन मुखे इयो त बुधायो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करण वारा मानो हथ त मथे कयो. कमेंट में एक एक दफा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त लिखो.

ब्यूटी क्रीम बाबा वठी चो हाणे तू देर न कर जल्दी वञ बाबा जल्दी वञ डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आ और तालिब मरी समारोह भाई में सुन रहे हैं तालिब मरी भाई तां जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पया आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी आवाज कोयल की जैसी है कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे ठीक है बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए अली रजा लगारी तां सगन मौजूद है थैंक यू

ஒரு மாதம் ஆகிட்டு வந்தோம் பாபா, டீஸ்கின் பியூட்டி கிரீம் வெட்டி அச்சு अनपढ़ियल मानू आया सफा सादो नजर न तो अचे नजर अना तो कोन बीहो बीहो ब्रेक मोटी चाहती एक कर नंबर बुधायां थी ठीक है तुम नोट कर वो डी स्किन फेस वॉश डी स्किन की ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए ठीक सो हाँ इतने वेहो इतने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठा थी वो जल्दी मोटी चाहती तुम गाड़ी न वजो इतने वेठा हो हिं वनी ओ हिं मोटूंगा सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन की प्लीज

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321 2230।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
9: 0331252576
5: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई। जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।

क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में. आप कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितनी भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ. मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे. तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं, और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी है. यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है. फेशियल ऐसा वैसा, बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है. ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है, और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है. अगर हम बात करें यहाँ पर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स की, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स को एड किया गया है. तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है ना वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो मर्द हजरात हैं, खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए, बाबा ये कैसे चलेगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स, या फिर आपके चेहरे पर जो ये एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन से, और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताती है तो क्यों बताती है, क्योंकि भाई गाल में दम होता है, प्रोडक्ट में भी दम आए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सोना सोना थी वजह.

में जहिड़ा सिंगार कया अथई सवा कुंवार लॻे थी ऐं तव्हांखे कुंवार लॻण जी ज़रूरत न आहे, पर बसि तव्हां इन्हनि सिंगारनि खां थोरो पाण खे बचाइण चाहियो था, छो त मेकअप जॾहिं तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा न, मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट तव्हांखे मिली सघनि था, पर उन्हनि चीज़ुनि खे अगरि तव्हां साइड रखो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, साईं वाह वाह थी वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे मिले पियो। तव्हां क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो, तव्हां नथा मिलनि त पोइ तव्हां जल्दी जल्दी नंबर ते राबितो करे सघो था, ऐं नंबर जेकी पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, ऐं जेको मां चई वियसि त बाबा मोट पोइ त तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायां थी। सो तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायांव थी, तव्हां नोट करे वठो, ठीकु आहे। ओके, सो पहिरियों नंबर आहे 3 5 5 9 7 ऐं ॿियो नंबर आहे 3 3 7 3 8 4 3 9 साउंड सो फनी।

0: गानो साई भलो हो गानो वणी वयो मुख्य बुधाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या कोन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल को फौरन बाद तमा जी चेहरे ते एडी खूबसूरती अची वेंदी तमा का मानू वरी वरी पुछना बुधायो ता सही डी खूबसूरती काडा आंदी तव आई ता उनन के बुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले ता पो ता नंबर से राबतो करी वेठो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वेठो ठीक हो गया। अच्छा ये फायजा अली की आवाज में गाना है जो की मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने लगा लिया वरना शायद नहीं लगाती। डिसो डिसो मां के नहीं सेल्फिश आया
1: रचाई किथे जाहे प्यार।
0: ओके जी हमारे साथ ये फजली मौजूद है कहती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस आजे सिस्टर सजरा मुस्कान कैसी हो डियर स्वीटी मैं बहुत अच्छी तुम बताओ कैसी हो मजे में और दर्दे दिल हमारा शो सुन रही है थैंक यू वेरी मच दर्दे दिल और मुनव्वर भाई बस कर जाए बस कर जाए महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए आमीन आमीन आमीन और कहते हैं कून जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज थोड़ो तहां के अचण में लेट थी वही है

रहियो बाबा। असराज में जतोई भाई हमें सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाईजान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्दे दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूरो क्रीम।

फरवा की पसंद अच्छी है, सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरी। वरियाम कहते हैं सिदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा। हाजिर हाजिर, बिल्कुल यो प्रोग्राम गानो मतलब तांज लाए शाम वाले प्रोग्राम में हलाए छड़ींदा से। ठीक है, याद कंदो थोड़ो हो जाए। अच्छा, ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर, सो हम सुनेंगे। अच्छा, ये आपके कॉमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रिमेक्स में चल गया है। चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे।

क्या बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं, बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। अच्छा, मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर सालार सिकंदर हमारे साथ हैं। मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और सी हैं हमारे साथ, एसन कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना।

अच्छा भाई, इरम की शादी है, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है बताएं। तो उन्हें बताइएगा जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। चलें जी, दिमाग की दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर। इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए।

मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम वीआईपी है, वो डायलॉग सुनाओ। सुनो जाना मैं बोल नहीं वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। तो मेरे पास एक शायरी है, वो जरा हम पढ़ लेते हैं।

सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों? तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों? तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों? तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों? तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों? फिर कैसे ना कहूँ तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों?

0: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरा ये आरजे वारजे छोड़कर सिंगिंग की दुनिया में आ जाती हूँ। हाँ जी, आपके कानों को खराब करने की जो है ना वो मैंने जरा कसम खा रखी है तो। हाँ जी, समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू।
1: जाने तू ना जाने तेरी बाहों।
0: अच्छा नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया। हजार भाई आपका गाना रह चुका है तो वो जरा हम 5 बजे वाली प्रोग्राम में सुन लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ तमाम से मिलूं था वेरी 5 बजे वाली प्रोग्राम में सो पांच ओ हिरु से रुख यार रखना कितने का गलती थी, मुझे तो माजरत कहूँ था। हाँ भाई, पोएट्री थोड़ी थी, मांग आई थी भैया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, ये आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी, मुनासिब कीमतों में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सो मोकलानी ना है बाबू, सिंह सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: बाबत वहां पर में वरी तब्दीलियों के ॾिसण वटां मिली सघनि थियूं गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर बात थी सघे थी। अमेरिका नओं हमिलो कयो त जवाब पहिरें खां वधीक ख़तरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदारनि इनकलाब जो तर्जुमान हुसैन चयो आहे त अमेरिका नओं हमिलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमाल कंदो। हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं
4: निशानो नाहे। पिछली दफ़ा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहां पे इस दफ़ा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूपहोल है जो छोड़ेंगे। उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनवान अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
5: वंस फॉर ऑल कोई ना कोई चीज करेंगे, बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
3: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण न ॾींदासीं। हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो। कंहिंखे जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर प्रेस मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फैसले ते रूह मूजिबि अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो। पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थियो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो। पीटीआई बानी जूं टे भेनरूं लाहौर में नज़रबंद। अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नौरीन नियाज़ीअ खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
6: नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही।
2: आप सुन रहे थे जीए

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30 to 6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद मातली। राबते लाए कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 to 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
5: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network सिंध की आवाज.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
5: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे यो निवी दुनिया पलोर रवानवी. خود پولیو رنز دا کدمونه او درولی هم شی. نو پا دی وجه دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی. او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی. زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا هغی دا خوبون و الوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقل مازوری.
6: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी. राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबह 9:30 to 6:30 शाम ताई. नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली. राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163.
7: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो. सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो.
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 to 10:30 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी.
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है.

0: ਅਤੇ ਕਹਿੰਕੇ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੀ ਇਨ ਵੇਰੇ ਵਨ ਫਾਰ ਆਲ ਥਿੰਦੋ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਜੂ ਹਾਲ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਜੇ ਸਾਮੂ ਆਹਨ ਪੀਟੀਆਈ ਵਟ ਅਨਾ ਬੇ ਵਕਤ ਆਹੇ ਬੰਦ ਗੇਟੀ ਤਰਫ ਨਾ ਵਜੇ ਵਫਾਕੀ ਗਰੋ ਵਜ਼ੀਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੇ ਚਰਿਓ ਲਾਹੌਰ ਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂ ਗੜੇਂਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਚਯੋ ਤਾਂ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਥਿਓ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੂ ਮੌਜੂਬ ਅਮਲ ਕਯੋ ਵਿੰਦੋ ਹਿਨ ਵੇਰੇ ਇਹ ਨਾ ਥਿੰਦੋ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਰਾ ਅਚਨ ॾह या वीह ॾींहनि ते बंदि थी वञे हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा आर्मी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे हालतूं बरक़रार रहियूं त हज़ार रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो पीटीआई बानी जूं टे भेनरूं लाहौर में नज़रबंदि अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नौरीन न्याज़ खे बि नज़रबंदि करे कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3MPO तहत ॿई भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो
1: इंशाल्लाह ताला नए सुबुह वाला मामला जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो चैम्बर्स हैं चाहे वो ट्रेडर्स हैं चाहे चैम्बर्स हैं चाहे किसान हैं तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे और इस बाद में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है
0: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारो होड ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ी सां अॻिते वधी रहियो आहे अलाह चाहियो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा सूबन वारो मामलो थदे या गरम खां घणो अॻिते आहे वरी वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहंदी 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फुड़ा पीआरिया वेंदा इफ़्तिताही तकरीब ते ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो मुहिम ख़तम कयो वेंदो पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि मनशाद विकरो कंदड़ मनशाद छॾे पाणी विकरो करणु शुरू कयो आहे हीरोइन विकणींदड़ पकड़िजी पवनि था पाणी विकरो कंदड़ सेनेटर बणिजी वञनि था कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त जंहिंजे हथ में पाणी फराहम करणु आहे उहे ई टैंकर हलाए रहिया आहिनि हाणे बि ॿारनि खे कुतनि जे चक खां नथा बचाए सघूं जन माण्हुनि जो कारोबार अरबे रुपियनि जो आहे उहे माण्हू पाणी कीअं फराहम कंदा मौजूदा निज़ाम तहत पाकिस्तान नथो हली सघे पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराची खां निकतल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो मुख्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमल कयो आहे हुकुमराननि खे लेवी वापसि वठणी पवंदी बलोचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनु बेड़ो कयो वियो हथियारत कया विया सिंध जे मुख्य इलाइक़े में ॿिनि औरतनि समेत 4 ॼणा क़तल घोटी भरिसां भाइटे कारे इल्ज़ाम हेठि पुफी खे क़तल करे छॾियो मोहम्मदपुर में जवाबदार वकार माची 16 सालनि जी पुफी हफीज़ा खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो शिकारपुर में कॉलेज रोड ते हथियारबंदर नौजवान समर अली जिस्कानी खे क़तल कयो एजाज़ असंजराणी ज़ख़्मी बंगो बहिण भरिसां घोट विस्तड़ो में ॿारनि जी ॻाल्हि सां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठियूं लॻण सबबि नौजवान जलाल सोलंगी क़तल नौशेरो फिरोज़ में फुलजी स्टेशन वेझो घोट दरिया ख़ान में जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण ते फायर करे छॾियो जवाबदार शफ़ीक राजपर ज़ाल नवाबज़ादीअ खे क़तल करण बाद पाण ते बि फायर करे छॾियो ज़ख़्मी हालत में इस्पताल मुंतकिल सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटी जे फहमीदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी थी आहे जी सिंध ऐं घरू सेक्रेटरी पेश न थे अदालत पुलिस खे नारी जी बाज़ियाब लाइ ॿिनि हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी ॿुधणी दौरान एडिशनल आईजी डीआईजी सखर नासिर आफ़्ताब पठाण एसएसपी घोटकी एएसपी सखर ऐं ॿिया पेश थिया एडिशनल आईजी रिपोर्ट जमा कराईंदे चयो त नारी खे बाज़ियाब कराइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि बासक सरदार खां कमेटी जोड़ी पुछा गाछा कई वई आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: धर माशुम वर कोटी कदमुना द यौनवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी औ द हगी द खूबन वलवत वजरिमुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: मातली आस पास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
9: तरक्की लाए
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03132525786।
6: जी हा 2315-2575-786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: जेकरे तवा के मेदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियों उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणी परेशान छण जी जरूरत ना आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मेदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-36-36-878 ऐं 0312-24-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-32-41-230।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अवल अलाह अलीम आला आल मजो धणी कादिर पंहिंजे कुदरत सीं कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम।

सिंधड़ी जी शाम में खोड़ सारा अवां सबनी भेनरों ने भायरन के सलाम। अजो के शो में अवां जो मेजबान अवां जो आरजे अवां जो पेंजो जी हां ओही सागियो अवां जो हाजिर है यूनिस बकारी। मौजूद सामिन असो साथ यकीन सते वगे ताई हों जहां अजोके साथ में गड हों तो वाह वाह वेंदी पोए अवां शामिल थियण जो असां अवां खे पैटर्न बुधाईंदासीं तरीकेकार पहिरीं कलाक में यानी जॾहिं हिन खां टाइम खां सते वॻे छह वॻे ताईं असां तव्हांजा मैसेज शामिल कंदासीं। उन लाइ मैसेज करण जो तरीक़ो तव्हांखे लिखणो आहे MTI थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखिजो ऐं 888 यानी 8881 ते मैसेज मोकिलिजो। यादि रखंदा असांजो जेको कोड आहे जंहिं ते तव्हांजो मैसेज ईंदो उहो हूंदो MTI ते मैसेज कजो ऐं स्पेस ॾिजो पंहिंजे ॻोठ शहर जो पंहिंजो नालो 8881 888 ते मोकिले ॾियो कंदासीं शामिल। ऐं हा जेको ॿियो कलाकु हूंदो यानी 6-7 वॻे ताईं अवां जूं लाइव कॉल्स वठंदासीं। त पोइ मौज़ूस ख़वातीन हज़रात साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में पहिरियों आवाज़ अवां जे लाइ प्ले थी चुको आहे ताज मस्तानी जो अचो।

वेलकम बैक मुझे सामाइन GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवां सां मुख़ातिबु आहे मोहबतुनि ऐं मुर्कुनि जे अॼोके मेले में असीं अवां सां मुख़ातिबु आहियूं ऐं यकीननि प्यार ऐं पंहिंजाइपे गसनि ते विख विख ते लफ़्ज़नि जा गुलाब अवां जे ख़िदमत में असां ऑफर कंदासीं अवां खे यकीननि भलीकार बि चवंदा रहंदासीं तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि सदाई सुखिया हुजो ऐं शाल अवां जे मुर्क में अहिड़ी न थिए अहिड़ियूं दुआऊं असां झोल झोल भरे तव्हांजे लाइ कंदासीं ऐं इहे दुआऊं अवां जे लाइ बार बार हज़ार बार कंदासीं सो दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो रेडियो सेट या इंटरनेट या थ्रू त तव्हां देर न करियो बसि हाणे ई शामिल थी सघो था मैसेज करण जो तरीक़ो बिल्कुलु SMS टाइप कंदो पहिरीं पहिरीं तव्हां टाइप कंदो MTI जी हा मैसेज वारे पेट ते वञी MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ जो पंहिंजे शहर जो नालो लिखो उन खां पोइ पंहिंजो नालो बि लिखिजो ऐं सेंड कजो मैसेज जेको असांजो नंबर आहे उहो नंबर आहे 888 यानी 888 8881 सिंधीअ में चइबो उन नंबर खे अवां मोकिलियो मैसेज त तव्हांजा मैसेज दिलि सां शामिल करे वठो अंगण आयम ईद ऐं सॼो ई आजियां दिलि में जंहिं लाइ दीद में भर में भेड़ो सोपी सो ही जेके मोहबती महफ़िलूं आहिनि उन्हनि महफ़िलुनि में अवांजा मैसेज अचणु लाज़मी हूंदा अवांजा मैसेज ईंदा त कंदासीं शामिल ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ऐं केरु असांजे हिननि इंतज़ार जे घड़ियुनि खे ख़तमु कंदो बाक़ी जेके मैसेज तव्हांजा असांखे जीअं जीअं पहुचंदा शामिल कंदासीं असांखे दोस्तो महिरबानो कदरदानो हिकिड़ो मैसेज पहुतो आहे जंहिंमें लिखियलु आहे त अस्सलामु अलैकुम ऐं ॻोठु आहे नोटो ऐं नोटो खां असांखे यादि कयो आहे रामचंद कुमार कोहली साहब ऐं गोविंद गुल अवां सां गॾु थैंक यू जी कमलेश तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरणे कुर्ब कमलेश ऐं रामचंद तव्हां जूं मोहबतूं तव्हां असांखे ॿुधो था अवां जा वॾा वर्ड जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं सदाई सुखिया हुजो लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुल रहीम अब्दुरहमान लगारी ओके ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अवां सां गॾिजी ॿुधनि पिया अवां जूं मोहबतूं ऐं मण मोहबतूं तव्हां जूं थैंक यू अवां बि ख़ुशि हुजो आबाद हुजो थैंक यू भलीकार चवंदासीं ऐं जनाब असांखे झलूरी जा मैसेज आहिनि में लिखियलु कुझु कोन लिखियलु आहे सर कॉल जो नंबर कहिड़ो हूंदो उहो नंबर ॿुधाईंदासीं जॾहिं कॉल्स वठंदासीं तॾहिं नंबर ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां साण बिल्कुलु शेयर कंदासीं त कहिड़ो नंबर हूंदो जंहिं ते तव्हां असांखे कॉल कंदा तेसि ताईं नोट करे वठो नंबर जंहिं ते मैसेज कंदो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त अॼोके असांजे हिन बज़म में शामिल थियण लाइ केरु केरु अचण वारो आहे कंहिंजो मैसेज असां ईंदो त पोइ उहे समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां कंदासीं पर पहिरीं ट्रैक ॾांहुं हली वठूं ट्रैक खां पोइ तव्हांजा काफ़ी मैसेज असां टैक्स मौजूद आहिनि जेके शामिल करणा आहिनि थोरो इंतज़ार कजो ही ट्रैक तव्हांजे नाम कयूं था सादिक फ़क़ीर जी सदा आहे सादिक फ़क़ीर साईं जेतोणीक असां वटि न आहिनि रहिया पर हुन जो आवाज़ असां वटि तव्हां क़यामत हूंदो अचो त गॾिजी ॿुधूं हू परे आहे परे आहे परे आहे

जी जन भी ट्रैक बुधंदा बुधंदा कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं थोड़ी देर का गड हुंदासीं कि ॾिण वञो छो त प्रोग्राम आहे जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक का पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनिस बकारी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: हाँ, अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिंजी स्किन के दियो हिक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302

0: 3689 ऐं 0312 3401 287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।

हूंदा जंहिंखे क्लिक कंदो तव्हांजो पंहिंजो शो तव्हांखे ॿुधण में। पोइ हलूं था मैसेजनि जे पासे ऐं असां मैसेज जेके हिन महिल रीड कयूं था उहे हूंदा स्क्रीन ते मौजूद। ऐं असांखे मैसेज पहुतो आहे निसार जत साहब जो रेलवे स्टेशन माथली खां। मिठा माण्हू तव्हां जेको ट्रैक चयो बिल्कुलु क्यू शीट में शामिल आहे, ज़रूरु शामिल कंदासीं। किरोड़े कुर्ब भा निसार जत मोहबतूं अवां जूं। ऐं बाबू लाशारी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे ॼामोट फार्म खां, अवां जूं महिरबानियूं। ऐं रीचल लिखियल आहे, शायदि मूंखे वधीक सम्झ में न आयो त इहो ॻोठ जो या इलाइक़े जो नालो, पर मोहबतूं तव्हांजूं। ऐं शहर सगियूं खां असांखे मोहम्मद छुटल हिस्पाणी साहब ज्वाइन कयो आहे। ऐं अवां सां राशिद हिस्पाणी गॾिजी ॿुधे पियो। मिठा माण्हू भलीकार चवंदासीं, अव्हांजो पंहिंजो शो आहे, अव्हांखे अव्हांजे शो में दिलि जे गहराइनि सां वेलकम ऐं भलीकार चवंदासीं। अनेक अहसान ऐं मोहबतूं तव्हांजूं अव्हांजे हिन प्यार ऐं पाबो खे कंदासीं हमेशह यादि। ऐं ॻोठ सोहराब निज़ामाणी खां असांखे ॿुधे थो मोहबती मंगण खान निज़ामाणी, अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी मोहबती मंगण निज़ामाणी साहब। ऐं नंढिड़ो अहसान निज़ामाणी ॿुधे पियो अव्हां जूं मोहबतूं, तव्हांखे प्रोग्राम सुठो लॻे थो ऐं अव्हांखे मूसीकी लाजवाब लॻे थी। किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। हिकिड़ो मैसेज जेको नामैलूम बाग खां नामैलूम महिरबान लिखियो, यानी रुगो लिखियल आहे अदा सलाम, यानी पंहिंजो नालो ॻोठ वग़ैरह कोन लिखियो। अदा अखियुनि ते वालेकुम असलाम, पर जॾहिं बि लिखो

वधनि था अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी जी वेलकम सईद अली छलगिरी साहब वेलकम ऐं ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां असांखे ज्वाइन कयो आहे हबीबुल्ला थेबो साहब अवां जूं तमामु घणियूं मोहबतूं हबीबुल्ला तव्हां लिखियो आहे त आपका शो वेरी नाइस आहे तमामु घणियूं अवां जूं महिरबानियूं आहिनि अवां जे ॿुधण जो अंदाज़ नाइस आहे ख़ूबसूरत आहे इन जे करे जेको आहे सो यकीन अवां खे शो सुठो थो लॻे साज़े आवाज़ जे साथ में हिकिड़ो ट्रैक आहे हिकिड़ो ब्रेक आहे पर गॾु गॾु हूंदासीं छो त इन में को बि विच में ब्रेक न हूंदो जेके बि तव्हांजा मैसेज ईंदा उहा शामिल कबा जेको हाणे ट्रैक मिले पिया कयूं रिहाना तबसुम जो आवाज़ आहे हिन आवाज़ खे अवां हमेशह ॿुधो हूंदो ऐं हिकिड़े हादसे तहत असांजी हीअ फनकारा बि हाणे असां वटि नाहे रही यानी हिन जो को नओं ट्रैक हाणे रिकॉर्ड न थी सघंदो पर रिहाना तबसुम जो आवाज़ बि असांजे सिंध जे हवाउनि में हमेशह हमेशह अवां जे लाइ गूंजंदो रहंदो

0: मोहम्मदी फार्मेसी नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लगण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।

वेलकम बैक मजी समाइन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क का वहां चाणा मुखातिब है अमा बुधो पेशो सिंधड़ी जे नाम जी हा सिंधड़ी जी शाम अमा जे नाम ऐ आरजे वने पेंजे यूनुस बकारी अमा चाणा मुखातिब है अवने मैसेजेस तकड़ा तकड़ा शामिल करियूं जिन मेहरबान असा के मैसेज मोकले हैं वे शामिल था करे वठूं मैसेज पहुंचो है जी जनाब मोहब्बती मंगण निजामाणी साहब जो गोठ सोहराब खान निजामाणी का अमा बियो मैसेज मोकले है असि अवाजा शुक्रगुजार आयूं तमाम घणी मोहब्बतूं अवा के चंदासी भली कार खुश जो आबाद जो मोहब्बती मंगण खान निजामाणी कुर्ब तहांजा तहांसा के बुधंदा आयो हमेशा जिया शामिल थींदा आयो अवां चयो तामीर हुसैन जो आवाज असांखे ॿुधाइजो बिल्कुल कोशिश कंदासीं मोहब्बती मंगण खान निजामाणी साहब कोशिश कबी त जेको तव्हांखे ट्रैक पसंदि आहे उहो तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायूं ऐं नंढिड़ो अहसान निज़ामाणी अहसान मंगण निज़ामाणी तव्हांखे जी ॿुधे पियो मोहबतूं लख थोरा ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां असांखे जॉइन कयो आहे हबीबुला थेबो साहब अदा हबीबुला तव्हां ॿियो दफ़ो मैसेज कयो असीं अव्हां जा शुक्रगुज़ार आहियूं कहिड़े कुर्ब तव्हांजा जो तव्हां असांखे यादि कयो आहे अव्हां जूं मोहबतूं ऐं अव्हां खे चवंदासीं भली कार शाद हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड खीर में खंड ऐं मेवनि में अंब हुजो ऐं तमामु घणियूं मोहबतूं ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक आहे जेको असां अव्हां जे लाइ प्ले पिया कयूं उन ट्रैक जो जेको ब्रेक आहे उन खां पोइ वापसि ईंदासीं इमाम बख्श ज़रदारी साहब जो आवाज़ आहे गॾु ॿुधी था वठूं ऐं यादगार ऐं पुराणनि ट्रैकनि मां हिकिड़ो ट्रैक पर ॿुधंदे तव्हांखे यकीन सुकून ईंदो अच्छा गॾु ॿुधूं ऐं ट्रैक दौरान तव्हां सां गॾु हूंदासीं जल्दी जल्दी सां टाइप कयो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो जंहिं बि राह मथां तुंहिंजा पेर पवन मुंहिंजा गीत हुजनि विखरियल उन्हनि वाटुनि ते

जी जना पुराणनि गाननि जे करे कुझु क्वालिटी गाने जी बहितर न हुजण जे करे असां ट्रैक साॻे फनकार चेंज करण जी कोशिशि कयूं था, ॿियो ट्रैक ॿुधण जी कोशिशि कयूं था ऐं असां सां गॾु रहिजो।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Park.
2: ज़रियन मौजे मोसा नकवी जी दौरे दौरान अमेरिका ईरान गालन जी बहाली ते भी गौर विचार कयो विंदो ईरान के तबाह करनो आहे मैशत सख्त मुतासिर करनी आहे या कह मुआहदे ताई पहुंचनो आहे मामले ते जल्द वडो फैसलो करण वारो आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान बाबत टे ऑप्शन बुधाए छड्या अमेरिकी टीवी के डिनर इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो ते ईरान जंग बाबत फैसलाती मरहले ते पहुंची वयो आया ईंदड़ ढीन में विच ओभर में वड्यू तब्दीलियों भी ऐसण ला मिली सन थी गरियल कौमन के इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात भी थी सके थी।

0: अमरीका नव हमलो कयो त जवाब पहिरीं खां वधीक ख़तरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो, ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। फ़ासदारान इनकलाब जे तर्जुमान हुसैन मोहबी चयो आहे त अमरीका नओं हमिलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमालु कंदो। अमरीकी अॾनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं निशानो नाहे बणायो वियो।
1: तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे, उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोअन अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
2: वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
0: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण जी इजाज़त न ॾींदासीं, हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे त बंद घिटीअ तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे, हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो। पीटीआई बानीअ जूं टेई भेनर लाहौर में नज़रबंद। अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नूरी नियाज़ी खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
3: नए सुबुह वाला मामला जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद

0: एम क्यू एम जी क़यादत जेका ॿोली ॻाल्हाए थी उहा क़बूल करण जोॻी न आहे। उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जी अक्सरियत पाण खे सिंधी समझे थी। एम क्यू एम लसानी बुनियाद ते विरहाङे ऐं नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली नवनि सूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रिए ॾेई ॿुधाए चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण एम क्यू एम अॻवाननि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदि अमल ॾींदे मत खे अथरादू कोठींदड़ एम क्यू एम वारा पहिरियां पंहिंजो मैंडेट साबित कनि। कराचीअ खे भताखोरी ऐं बोरीबंद लाशनि जी सियासत एम क्यू एम ॾिनी। हाणे फितने फसाद विगोड़नि ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली।

0: वेलकम बैक मौजूद सामेईन, जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवां सां मुखातिब आहे। तव्हां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे जी एफ एम लाड़कानू, जी एफ एम सखर, जी एफ एम मेरपुर ख़ास, जी एफ एम मोरो, जी एफ एम मेहरापुर, जी एफ एम सकरंड, जी एफ एम मटियारी ऐं जी एफ एम मातली जे गॾियल आवाज़नि खे। साज़ ऐं आवाज़ जे हिन साथ में शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। अवां जो आर जे अवां सां मुखातिब आहे यूनिस बकारी। मोहबतुनि जी महफ़िल जारी उसारी। सो मौज़ूस ख़वातीन हज़रात, यकीन असां हाणे जेको शो जो हिसो आहे उन में सेगमेंट हूंदो आहे लाइव कॉल्स जो, त नंबर नोट करे वठो जंहिं ते तव्हां कॉल कंदव, ऐं कॉल फ़क़ति हिकु दफ़ो करणी आहे, ऐं उन में अहिड़े नमूने ॻाल्हायूं जो पाण जी कचहरी बि सुठी थी वञे, सुठियूं ॻाल्हियूं बि थी वञनि। त पोइ नंबर नोट करियो 0334-35-25-786। जी हा, नंबर आहे 2-34-25-25-786। जी जनाब, हलंदासीं पहिरीं कॉल जी तरफ़, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम यूनुस भाउ, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ख़ैर आहे?
0: अलहमदुलिल्लाह। केरु साहिब ऐं किथां खां?
1: नोट सर पार्कर मां।
0: रामचंद, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
1: अलाह जा शुक्र लॻा पिया, तव्हां ख़ुशि वेठा आहियो, तव्हांजी तबियत ठीकु आहे?
0: जी जी, अलहमदुलिल्लाह, अवां जी दुआ लॻी पई आहे। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: दिलीप कुमार मेघवार ॿुधे पियो, रहमान फ़क़ीर आमर जंहिंजी तव्हांखे दुआऊं सलाम चयो, चोवन कुमार कोली ॿुधे, ॿिए जेकी संगत ॿुधे बि, रामचंद कोली सलाम शाल क़बूलु।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रामचंद, महिरबानी अवां जूं, लक थोरा तव्हांजा। जी जनाब, नोटे खां रामचंद जो ही आवाज़ तव्हां ॿुधो, ऐं हाणे कॉल करण लाइ केरु हूंदो असां साण, सो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, इन जे करे नंबर ॾिसी था वठो। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलहमदुल्ला, केरु साहिब ऐं किथां खां? जी रुस्तम अली पवार साहिब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला मतारा जोड़।
1: शुक्र आला,
0: तव्हां ॿुधायो, तव्हां ख़ुशि हो, तबियत कीअं तव्हांजी? अलहमदुल्ला, अलाह साईं अनेक अहसान आहिनि, तव्हांजी दुआऊं आहिनि, अवां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे?
1: असांजो तव्हां लाइ हर दुआऊं ई आहिनि, तव्हांखे ख़ुशि।

0: में जो सर मारा प्यारो
1: बस रोआड़े छी गाई तो मुझे माना जबरदस्त मुझे लाए पर आऊँ वो अलचो दिल मन भरजी आई है एडो सुठो मुझे लगा थैंक यू कुर्ब खुश हो जो आबाद हो जो जी मजे समय नंबर है 0334352578 यानी बुढ़ी 3 पंटी पंजी 786 ते कॉल ते केर हुंदो उन जे लाए स्क्रीन में अखियो विछायल एंड सनासी कॉल ते केर आहे ओके जी कॉल अटेंड था कियो हेलो अस्सलाम वालेकुम साईं मीरानी साहब खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़
2: अलहमदुल्ला शुक्र आ मौसम मटी आ ॾाढो मज़ो लॻो त सफ़र में लती पर

0: वाह वाह जबरदस्त। मीराणी साहब जेका हाँ मौसम चेंज पई थिए, तब्दील पई थिए, इन तब्दीली जेका मौसम जी आहे इहा हू बि चवंदा आहिनि न, मौसम ऐं माण्हू जॾहिं मटिबा आहिनि त तकलीफ़ थींदी आहे। तव्हांखे छा महसूस थींदो आहे? जी मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे त मौसम मटिबी आहे न, तॾहिं माण्हू खे ज़ुकाम बुखार खंघि थी पवंदी आहे ऐं माण्हू मटिबा आहिनि त बि दिलि ॾुखी पवंदी आहे। तव्हां छा था चओ हिन हवाले सां? अच्छा, इन जे करे चलो हिकिड़ो कमु कयो, भला तव्हां पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणी वठो जेके दोस्त तव्हां सां ॿुधनि था। वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, थैंक यू सर, थैंक यू, महिरबानी। ओके जनाब, साथ में कंदासीं हाल ऐं अहिवाल। नंबर असांजो 0334352576। हिकिड़ी वधीक कॉल अची रही आहे, ॾिसंदासीं कॉल कंहिंजी आहे ऐं उन कॉल खे ॿुधी था वठूं। हलो अस्सलाम वालेकुम, बल्कि कोशिशि कयूं त कॉल असीं अटेंड करे वठूं। हलो अस्सलाम वालेकुम, हलो अस्सलाम वालेकुम, शायदि आवाज़ कोन पियो अचे, आवाज़ अचे पियो? वालेकुम असलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? मोहबती मंगण निज़ामाणी साहिब, ख़ुशि आहियो, चङा भला, मतारा
1: जोड़।
0: अलहमदुल्ला, अव्हांजी दुआ लॻी पई आहे, अव्हां सां गॾु नंढड़ो अहसान ॿुधंदो हूंदो। साईं महिरबानियूं, साईं शाइर हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़ामाणी असांजी धरतीअ जो तमामु वॾो शाइर आहे, जेकॾहिं उहो ॿुधे पियो त असांजा भाग भला आहिनि ऐं लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण साहब। तव्हां सोहराब निज़ामाणी जो तारीख़ी ॻोठु आहे कड़ियो गंवर जे वेझो, तव्हां ॿुधो पिया किरोड़े कुर्ब अव्हांजा भला सोहराब निज़ामाणी जे ॻोठ जा भाउ मोहबती मंगण, अव्हां ख़ुदि झूंगारींदा।

0: तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम जो इंतज़ार था करियो, बसि ॿियो छा घुर्जे? असांजा सभई प्रोग्राम तव्हां जे नाओ बसि चलो थैंक यू वेरी मच लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण। शायदि सिग्नल घटि हुजण जे करे कॉल कटिजी वई, पर ख़ैर तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ॿुधी वरिती आहे। ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? जी चांडिया साहब, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। तव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे? अच्छा अच्छा, सभिनी खे भली कार साईं, भली कार, महिरबानी। महिरबानी लख थोरा। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में। असां कॉल जो इंतज़ार कंदे कंदे हिकिड़ी कॉल अटेंड था करे वठंदासीं, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, बल्कि कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। 2034-3025-786 जे नंबर ते अव्हांजी कॉल पोइ हाणे कॉल कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां?
1: लार खान ॻाल्हायां पियो।
0: ज़ोइब ख़ान साहिब, भली कार चवंदासीं तव्हांखे। वालेकुम असलाम ऐं महिरबानी असांजी सॼी टीम खे दुआऊं ऐं सलाम ॾियण जे लाइ। अव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे? ज़ोइब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो ज़ोइब तव्हां ताईं?
1: जी, ज़बरदस्त आवाज़ अचे पियो तव्हां।
0: हा अच्छा, ज़ोइब तव्हां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे हीउ प्रोग्राम? अच्छा, तमामु घणी मोहबत। पर अॼु ज़ोइब जेके चवां तव्हां मूंखे ॻाए ॿुधायो, ॿुधाईंदा?
1: बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं, पर तव्हां असांजी फरमाइश पूरी कोन।
0: सर, असल में कालोन जे विच में बैकग्राउंड में गाना हलंदा आहिनि, फुल गानो थी नथा नशर करे सघूं। बाकी ईअं आहे त जॾहिं सुभाणे वारो प्रोग्राम हूंदो त पहिरें कलाक में तव्हां मैसेज कंदो त उहो कलाम ज़रूर हलंदो। न न, को मसलो कोन्हे। गीत खारा न चओ, गीत खारा न चओ, ज़मानो चवे त वञी चवे, तूं त प्यारा न चओ। हा ॿुधाए ॿुधाए।

0: महिरबानी लखत होरा तव्हांजा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क, तव्हां ॿुधो पिया GFM लाड़काणू, GFM सखर, GFM मेरापुर, GFM सकरंड, GFM मेरपुर ख़ास ऐं GFM मातली। शो जो नालो आहे जी हा जनाब सिंधड़ी जी शाम, ऐं आर जे आई यूनिस बकारी मोहबतूं अव्हां जे नाम करे वठूं, ॾिसूं था। हलो जी, केर साहब? अलहमदुल्ला, अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि। ॿुधायूं अव्हां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे? हा उहो ईअं, असल में नंबर ते रश आहे। इहो अहिड़ो वीचारो नंबर आहे, इहो टाइम ते हिन ते एॾी रश थींदी आहे, जेकॾहिं नंबर खुद ॻाल्हाए सघे हा न त रीहूं करे मूंखे छॾे भॼी वञे। हा
1: बिल्कुलु,
0: ॿ नंबर आहियूं कोन, हिकु नंबर आहियूं। अच्छा, मिठा माण्हू, भला अव्हां खे ॻाइण सुठो लॻंदो रुअण या खिलण? खिलण बाप।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली आस पास की अवाम खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% सैकड़ो तारफीन लाए हर दवा।

0: सैकड़ो रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ

0: सुनते हैं, हमारे दोस्त सुनते हैं, जो अपने सुनते हैं, जो समझते हैं, उन सब का शुक्रिया, और स्पेशली आपका कि आपने पहली बार शो में शिरकत की है।
1: सर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, और रही बात तो दूसरी की, आप की आवाज़ और आपकी मिठास और आपके ये जो अल्फाजों की मोहब्बत की हमारे ऊपर छांव होती है ना, यकीन करें कॉल की कि आज प्रोग्राम में लाजमी शामिल होना।
0: साई मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप शामिल हो गए हैं, और ये एहसान मोहब्बत और ये हमेशा जारी।
1: थैंक यू, और इंशाल्लाह जब तक ये तो मैं दौड़ रहा है खून और ये सांसें चल रही है तो ये बरकरार रहेगी मोहब्बत। समाते हैं जहाँ जहाँ सुन

0: बहुत शुक्रिया ॾिसंदासीं त हाणे असां कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मिठा माण्हू।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां?
1: साईं रंजन कोरी, कोरी गोठ मीरपुर ख़ासि खां।
0: छा हाल आहे रंजन साईं, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
1: अलाह पाक जो शुक्र आहे साईं, तव्हांजी दुआऊं।
0: हा, मौसम कीअं तव्हां?
1: साईं मौसम त माशाला गरम थी वियो आहे।
0: अच्छा, मज़ो थी वियो आहे मौसम जो?
1: मौसम गरम आहे, ॾींहं में टे टे चारि चारि दफ़ा विझूं था, पहिरीं ॿ दफ़ा विझंदासीं, हाणे चारि दफ़ा पंज दफ़ा।
0: सुठी ॻाल्हि आहे, सिहत जे लाइ ज़रूरी आहे न त मौसम गरम। हिन ही आहे साहेड़ियुनि जे पचण जी मौसम, त फसल जे लिहाज़ खां कुदरती निज़ाम आहे, गर्मी आहे, छो त मथां सर्दी बि अचणी आहे। वरी जेकॾहिं तव्हां चारि चारि दफ़ा विझंदो त सिहत याब रहंदव न?
1: जी जी, तव्हांजी तबियत कीअं आहे तव्हां ॿुधाइजो।
0: अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ आहे। बिल्कुलु ख़ुशबाश ऐं हशाश बशाश लॻो पियो आहियां।
1: तव्हां लाइ जुमे वारे ॾींहुं नियाज़ जुड़िजे, मां गॾिजी दुआ कराई जमायत पाईंदी।
0: साईं मां थोराए थो आहियां, तव्हांजे दुआउनि त जीअण सेखारियो आहे।
1: जी जी,
0: कुर्ब साईं, साईं मुंहिंजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, लख थोरा तव्हां सां, तव्हां असां सां गॾु आहियो, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु आहे? जल्दी नाला वठंदव त मां ब्रेक न हलियो वेंदुसि।
1: जी जी, हिकिड़ो आहे डॉक्टर लालचंद, हिकिड़ो आहे डॉक्टर फरहान, हिकिड़ो आहे मुंहिंजो दोस्त अज़ीम लाखो, हिकिड़ो आहे हकीम लाखो।
0: जी जी,
1: ॿियो आहे नियाज़ जो।
0: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जनाब साहब, साथ में न डिड़ो ब्रेक है, मैं जो वापस तो जा।
2: 8:45 PM This time check is brought to you by
3: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network. GFM 88 Network. सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए से 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो हुई, अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनीवी दो सास्की वरकवल महेर हुई। जकच हम द सास्की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
6: मातली आस पास की अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: आ, आ, आ, आ,
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहतल
6: अम्मा आयश।

0: जी जनाब, वेलकम बलिकार खुश आमदीद ही आहे जी FM 88 रेडियो नेटवर्क एक ही वक्त अवां बुधो पिया GFM मातली, GFM मेरप्रखास, GFM अटियारी, GFM मेहरापुर, GFM सकरण, GFM मोरो, GFM लाड़कानो ऐं GFM सखर। शो जो नालो आहे सिंधड़ी जी शाम ऐं यूनुस बकारीअ जा सलाम। आख़िरी साथ आख़िरी लम्हात, सो जनाब कॉल्स जे लाइ नंबर आहे 0334352578 6। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां? अलहमदुल्ला, छा हाल आहे इमाम ॾिनो बंबरो साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला?
1: हा अलहमदिला,
0: वरी असल में टोन जो आवाज़ थो अचे। मां जेॾी महिल रेडियो ते शो थो कयां न, त हिकिड़ो तव्हां सां मुंहिंजी ॻाल्हि पई हले, ॾह मथां कालू लॻंदियूं, सभिनी जो गोड़ एतिरो थो थिए जो उहो क्वालिटी न थी वञे। असांजी मजबूरी आहे, मजबूर आहियां। काल वेटिंग जे लाइ इशू असां इहो ई हिकिड़ो आहे, त असां काल जेकॾहिं वेटिंग वारो था रखूं, मुंहिंजो अॻे रखंदो आहियां, त सभई जेके आरजेस या शो थींदा उन में टोन टोन जो आवाज़ न ईंदो आहे। मां वरी कैन जो आवाज़ अचे थो, माना उहो सुठो कोन पियो लॻे इन जे करे। साईं, तव्हां जेको वणे सो ॿुधायो, दोस्तनि जा नाला वठो, गानो ॻाए था ॿुधायो, तव्हां मूं सां खिली था ॻाल्हायो, जेका तव्हांजी मर्ज़ी।
1: हा गानो
0: चओ, दोस्तनि खे सलाम चई सिर्फ़ ॿ सिटूं थल ॻाए ॿुधाईंदा, वधीक न? हा

0: रगो कोने लाय में ऐं रूह वञी पासाय में तॾहिं फिर पियो कार वेस में अला दिल लॻी परदेस में भागने में के सूर हुया तॾहिं दिल लॻी परदेस में।
1: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त। अच्छा भला हाँ दोस्तन ने नाला खड़ी वेठो साई
0: दोस्त बुधंदा जेके दोस्त बुधंदा उत्तर दखण ओलह ओभर जिते तव्हांजो मिठा आवाज़ महिल वञे सभिनी लिस्टर इलाही सारा सलाम इमाम बंबरे तरफ़ा साईं।
1: महिरबानी साईं इमाम बंबरो साहब वेलकम वेलकम।
0: महिरबानी लख
1: हाफ़िज़ जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में।

0: आख़िरी लम्हात ऐं आख़िरी लम्हात में तव्हां असांखे कॉल करे सघंदा 0334352578 नंबर आहे असांजो, ॾिसंदा कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हिकु दफ़ो ॿीहर नालो ॿुधायो। वालेकुम अस्सलाम। जी अदा, नालो ॿुधायो पंहिंजो। ओके जनाब, हिकिड़ो असां वटि कॉल अचे मुश्किल सां थी, ऐं वरी उन में दोस्त असांजी ॻाल्हि ॿुधण बजाए रुगो हलो हलो था कनि। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केरु साहिब ऐं किथां खां?
1: सर, अल्ताफ हुसैन वठो पियो ॻाल्हायां, सजावल मड़े बुला खान खां। कहिड़ा हाल में चयो, तबियत ठीकु आहे?
0: अलहमदुल्ला। सजावल जे वेझो मड़ो बुला खान खां तव्हां असांखे ॿुधो पिया, कहिड़ा हाल आहिनि अल्ताफ वोठा साहिब?
1: वालेकुम
0: अस्सलाम बाबा साईं, के सलाम साईं। जी जनाब, साज़ आवाज़ जे साथ में आख़िरी लम्हात ऐं आख़िरी लम्हात आहे। यकीन जेके थोरा मिंट बचिया आहिनि, उन थोरनि मिंटनि में वञी कॉल्स वधि में शामिल पिया कयूं। ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केरु साहिब ऐं किथां खां? शहज़ाद डंगड़ो साहिब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी, ठीकु आहे। सभिनी जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं, लख थोरा। ओके जनाब, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे, ऐं शहज़ाद डंगड़े जी कॉल खां पोइ कॉल कनेक्ट थिए थी, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हूंदो। ओके, कॉल अची चुकी आहे, त कॉल खे अटेंड करण जी करियूं था भरपूर कोशिश। ऐं हलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं, अलहमदुल्ला। केरु साहिब ऐं किथां खां? हा साईं, बिल्कुलु बिल्कुलु, महिरबानी तव्हांजो, तव्हां असांखे ॿुधो था, ऐं कॉल मिलाईंदे मिलाईंदे नेठि त कॉल मिली वई साईं।
1: जी जी, सरदार कॉल लॻी
0: साईं। कुर्ब तव्हांजा, कुर्ब तव्हांजा, तव्हां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे? सभिनी खे सिक भरियो सलाम, असांजो बि क़बूल पवे।
1: वालेकुम सलाम। मौला तव्हांखे साईं शादाबाद रखंदो, मौला वधाईंदो। रोज़?
0: जी रोज़ न हूंदो, हफ़्ते में ॿ ॾींहं हूंदो आहे, यानी अॼोकी ॾींहुं सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5 खां 7 वॻे ताईं। बस हाणे वञी ॿ टे मिंट बचा
1: आहिनि
0: साईं। हाणे ई माना हलनि पिया गाना बैक टू बैक, तव्हां जीअं ई कॉल ख़तम कंदो तव्हांखे कुझु ॿुधण में ईंदो।
1: न, असांखे असांजी दिलि जी चयो को ॿुधाईंदो, ॿ टे लाइनूं
0: ॿुधायो। ॿुधायो, नालो वठी वेठो फनकार जो।
1: हा, अब्दुल गफ़ूर जो आहे इहो कलाम। वाह जादू घर जादू कितो दिलड़ी मेडी को काबू कितो।
0: ॾिसूं था, ॻोल्हियूं था, जेकॾहिं असांखे तकिड़ो तकिड़ो मिली ज़रूर ॿुधाईंदासीं।
1: अब्दुल गफ़ूर जो अथव, तमामु ॿुधण खे सलाम, ख़ासि तव्हांखे सलाम।
0: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। महिरबानी साईं, महिरबानी। लख थोरा कुर्ब साईं, थैंक यू वेरी मच।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोई ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते.
4: इस्लामाबाद ते कंखे पे चढ़ाई करण न दींदासी. इन भेरे इवेंट्स फॉर ऑल थींदो. केपीए जो हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि. पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे त बंद घेटीअ तरफ़ न वञे. वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो. लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो. हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे. हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो. अफ़ग़ानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा. आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे. हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो. इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न पिया वञूं. कॾहिं बि कानून हथ में न खणंदासीं. हुकमरान भड़काए रहिया आहिनि पर असीं सियासी माण्हू आहियूं. सियासी चैंपियन ॿुधाइनि त एहतजाज खां सवाइ ॿियो छा कजे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस. बैरिस्टर गोहर चयो त पुरअमुन रहण जी त सज़ा मिले पई. बानीअ जूं भेनरूं जेल में आहिनि. 1500 कारकुन गिरफ़्तार थी चुका. सेनेटर्स ऐं असेंबली मेंबरनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो. इस्लामाबाद ईंदासीं त हर पासे पाकिस्तानी झंडा हूंदा. जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ जो मशरूत इशारो ॾेई छॾियो. मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त फ़िलहाल मुख़ालिफ़ धुर बेतमादी रिथ आणण जी पोज़ीशन में नाहे. पीपल्स पार्टी हुकूमत खां बाक़ायदा धार थी त इहा अक़लियत वरी हुकूमत हूंदी. उन खां पोइ बेतमादी रिथ आई त हुनजो साथ ॾिनो वेंदो. पीटीआई खे एहतजाज जो मुकमल हक़ आहे. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़ल रहमान वधीक चयो त दांधली ज़रिए आयल हुकूमतूं आहिनि ऐं कानून पामाल करे रहियूं आहिनि. घर में बाह लॻल आहे पर कॾहिं नवनि सूबनि त कॾहिं वरी NFC जा मसला छेड़िया वञनि था. मुल्क जे ॿिनि सूबनि में हुकूमत जी रिट नाहे रही. पीटीआई बानीअ जूं टई भेनरूं लाहौर में नज़रबंद. अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नूरीन न्याज़ी खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो. डीसी लाहौर जो चवणु आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3 MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो. गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो. खैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन. अपघाती बमबारनि समेत 37 दहशतगर्द मारिजी विया. सुध समा वारी वज़ारत मूजिब खैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्द हमलनि बाद कोहाट हंगू ऐं टल में गुज़िरियल राति ऑपरेशन कया विया. फिज़ाई ऑपरेशन दौरान 37 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो. सरहदी इलाइक़े में ख़ारजनि जा थाक बि तबाह कया विया. इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला ताराड़ चयो आहे त डिॼणा दहशतगर्द लिकी हमला करे रहिया आहिनि. धरतीअ जे बहादुर पुटनि मुल्की दिफ़ा लाइ जाननि जा नज़राना पेश कया. फ़ौज ऐं पुलिस जे जवाननि बहादुरीअ सां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिसो वरितो. सभिनी खे गॾिजी दहशतगर्दीअ जो नासूर ख़तम करणो पवंदो. दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं सुख सां न वेहंदासीं. कोहाट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अता ताराड़ चयो त पीटीआई जी सूबाई हुकूमत रुगो सोशल मीडिया ते पोस्टूं रखणु ॼाणे थी. इहो तय आहे त इस्लामाबाद तरफ़ कंहिंखे बि अचण न ॾिनो वेंदो. सोहेल आफ़रीदी कुझु नथो करे सघे त घर हलियो वञे. ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी इस्कंदर मोमिनीअ सां मुलाक़ात. ॿिए तरफ़ां लाॻापन समेत खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि. मोहसिन नक़वी ईरान जे ॿी क़यादत सां बि मुलाक़ातूं कंदो. ज़रियुनि मूजिबि मोहसिन नक़वी जे दौरे दौरान अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि जी बहालीअ ते बि गौर कयो वेंदो. ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे. मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति 3 ऑप्शन ॿुधाए छॾिया. अमरीकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां. ईंदड़ ॾींहनि में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं. गडियल कौमन के इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात भी थी सके थी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रहंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद

0: लगे दहा कदम
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252576
2: जी हां बुड़ी 331 25 25 786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज

सिखम जा सुप्रीम न्याई खां नहीं सिख मुंजा सुप्रीम सड़े सारो डी बाहर बाफ न निकरे जी एफएम 90.4 मातली ये लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम रस रिहान साण करे आऊं हाजिर आया खिदमत में आवाज आरजे अवाज मेजबान अवाज भाई अवाज दोस्त मीर मुर्क वाठो

हा साईं, अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि? असांखे उम्मीद आहे त अवां जिते बि हूंदा ख़ुशि हूंदा। हू बि असांजी अवां जे लाइ इहा दुआ हूंदी आहे त ख़ुशियुनि जा खोड़ गुलाब अवां जे जीवन झोल में सदाई टिड़ंदा ऐं झूमंदा रहनि। आमीन सुमामीन।

साईं मुंहिंजा थोरी गैर हाज़िरी खां पोइ हिकु दफ़ो वरी ॿीहर अव्हां सां मुखातिब आहियूं प्रोग्राम रस रिहाइण में ऐं अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त हिन प्रोग्राम में अव्हां जो ई असांजो साथ रहंदो इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं। अव्हां बि असां सां गॾु गॾु रहिजो, पंहिंजी मौजूदगीअ जो अहसास बि ॾियारिजो। अॼु जे प्रोग्राम में मूंसां गॾु आहे शाहनवाज़ ख़ासि केली, जेको साथ ॾींदो अव्हां ताईं हिन प्रोग्राम खे पहुचाइण में।

साईं मुंहिंजा ज़िंदगीअ में सब्र करण तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं सब्र जो दामन न बि झलियो थींदो आहे, पर चवंदा आहिनि सब्र जो मेवो ॾाढो मिठो बि थींदो आहे। माण्हू जज़्बाती बि थींदो आहे, मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतूं हूंदियूं आहिनि, पर उन्हनि मुख़्तलिफ़ कैफ़ियतनि में उहा उदासी वारी कैफ़ियत हुजे, परेशानी वारी कैफ़ियत हुजे, जज़्बाती वारी कैफ़ियत हुजे, पर जेकॾहिं माण्हू थोरो ज़ब्त कंदो पंहिंजे पाण ते, त थी सघे काफ़ी मसला हल थी सघनि। तव्हां बि जेकॾहिं हिन प्रोग्राम में मैसेज करणु चाहियो त तरीक़ेकार अव्हां खे ॿुधायूं, हुन खां पोइ हलंदासीं मौसीक़ी जी दुनिया जी तरफ़। तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे, सभ खां पहिरीं मैसेज ऑप्शन में वञी करे लिखंदा MTI, MT आहे।

रिकॉर्ड फॉर्म मातली जो एमटीआई का पंज गोठिया शहर जो नालो अड़ी गाल असा शेयर करण चाहो तो वह भी लिखी सको जै नंबर ते मोकलींदा वो नंबर आए जी हाँ वो नंबर है 88 81

ऐं साथियुनि जे आवाज़नि में ॻाल्हि छा साईंअ जी वाई खां पोइ जिन हाणे हाणे असांखे ॿुधण शुरू कयो आहे पंहिंजनि महिरबानी उन्हनि खे चवंदा वेलकम ऐं भलीकार। उन्हनि खे ॿुधायूं त प्रोग्राम आहे रस रिहाण। रस रिहाण में अव्हां जो ई असांजो साथ रहंदो इनशाला ताला राति जो 9 वॻे ताईं। मुंहिंजे शाह साहिब जी वाई हुई मुंहिंजो जोगीअ सां संग, मुंहिंजो आदेसियुनि सां संग। इहे जेके रिश्ता हूंदा आहिनि उन्हनि जी वॾी अहमियत हूंदी आहे, पर रिश्तनि जो जेको क़दुरु आहे उहो के के माण्हू ॼाणंदा आहिनि, सभु त न ॼाणे सघंदा आहिनि। आम तौर ते इहा चवणी आहे त लाइजे त निभाइजे। ही जेके रिश्ता आहिनि उहे पंहिंजा हुजनि, जेके पंहिंजनि खां शुरू थींदा आहिनि, उहे दोस्तीअ ताईं वेंदा आहिनि, दुआ सलाम ताईं वेंदा आहिनि। बहरहाल जंहिंसां जहिड़ो बि रिश्तो हुजे उनखे क़ाइमु रखिजे। ॻाल्हियूं अव्हां सां थींदियूं, पर गॾो गॾु अव्हां असांखे यादि बि कयो पिया त अव्हांखे बि यादि कंदा हलंदासीं।

जी हाँ, अब्दुल अजीज मल्हा साहब असा याद किया है, गुल हसन मल्हा साहब असा याद किया है, शीरान अली असा याद किया है, सोढे खान असा याद किया है, इन मंजी है कराची का नवाज, शायद सब गर्जी बुधो पा, रब नवाज सोढ़ो भी है, रफीक मल्हा भी।

अॼु बि ॿुधे पियो साईं अव्हां जी महिरबानी। राजे खानाणी खां रामचंद सोनाणी बि प्रोग्राम ॿुधे पियो, धनु सोनाणी बि आहे, हरचंद बि अव्हां सां गॾु आहे, ऐं आतमदास सोनाणी बि अव्हां सां गॾु आहे, हमीर सोनाणी बि अव्हां सां गॾु आहे, जावेद मल्ला बि अव्हां सां गॾु आहे, अली रज़ाक आहे, ऐं कृष्ण सोनाणी बि अव्हां सां गॾु आहे। बहरहाल अवी जेके 8-10 दोस्त आयो पाण में गॾिजी वेही असांखे ॿुधो पिया, अवां सभिनी महिरबानी। ॻोठ हाजी सहते में असां ताईं आवाज़ पहुतो आहे नालनि जी सूरत में, हाजी सहते जो, शहबाज कासकेली जो, आसिफ सहते जो ऐं साले खान जो। वॾी महिरबानी अव्हां जी। अलीपुर खां जुमन अबड़ो बि असां सां गॾु। जुमन साईं वॾी महिरबानी। मूं अव्हां खां पहिरीं बि हिकिड़ो सवालु पुछियो त मोटरसाइकिल में इहो लाउड या लॻल आहे या न।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0386-3163।
2: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं साबितो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियणु,

0: तुंहिंजे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
1: जी हा, 2315-2575-786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो वरी अवां रथ रियाण प्रोग्राम में अवां जो असांजो साथ रहंदो इंशाल्लाह ताला राति जो 9 वॻे ताईं। दरगाह मंदर पीर खां अब्दुल अज़ीज मल्हा साहिब गुल हसन मल्हा शेर अली मल्हा नवाज सोढो फकीर मल्हा अदा सांग आख़िरी जलाल जो प्ले कयो। कोशिश कंदासीं वाइदो नथा कयूं जेकॾहिं असांजी म्यूज़िक लाइब्रेरी में मौजूदु आहे। ॻोठु अब्दुल अज़ीज़ सूमरे खां अज़ीज़ सूमरे असांखे यादि कयो, वॾी महिरबानी। गुलाब लगारी खां असां ताईं मैसेज पहुतो आहे, ॻोठ जो नालो आहे भीषम खान रिंद, उतां खां गाज़ी खान रिंद असांखे यादि कयो हमेशा वांगुरु। हिन भेरे बि रिज़वान अली रिंद बि हुननि सां गॾु आहे, फैज़ान अली रिंद साहब बि हुननि सां गॾु आहे, शहज़ाद अली रिंद ऐं नंढड़ी कोनेन ज़हरा बि अवां सां गॾु आहे। अवां मूंखे सॼी टीम खे मुबारकूं चयूं, असीं बि मोट में अवां खे चवंदासीं वॾी महिरबानी ऐं यादि करण लाइ अवां जूं मोहबतूं। ॻोठ मोहम्मद यूसुफ नोतकाणी खां असांखे सलाम चया आहिनि ज़ीशान मुदसर ऐं मोहम्मद क़ाइम अली नोतकाणी शायदि आहे, ज़ुल्फ़कार आज़ाद बि असां सां गॾु आहे, वॾी महिरबानी तव्हांजी। मास्टर मंज़ूर खे अवां ॿुधणु चाहियो आहे जेकॾहिं इहो साॻियो गीत जंहिंजी अवां

मुया सिटी खां ॻोठ जो नालो आहे हाजी राज़ी रिंद शफीक अहमद रिंद साहब असांखे ॿुधे पियो मोहम्मद याकूब रिंद साहब असांखे ॿुधे पियो अली मुर्तज़ा रिंद बि असांखे ॿुधे पियो हैदर रिंद ई अवां फरमाइश कई आहे ॾिसूं था जेकॾहिं लाइब्रेरी में हैदर रिंद मौजूदु आहे त वॾी महिरबानी प्रोग्राम ॿुधण जे लाइ मोहबतूं ॾियण जे लाइ मोट में असां समूरियूं दुआऊं अवां जा नाऊं कयूं था

हिन बज़्म जो हिसो बणजण चाहियो त शामिल थी सघो था। मैसेज ऑप्शन में वञी करे लिखंदा MTI मुखफ़ आहे, शॉर्ट फॉर्म आहे माकली जो, थोरी विथी यानी थोरो स्पेस, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो। जेकॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि लिखण चाहियो त उहा बि लिखी सघो था। जे नंबर ते मोकिलींदा उहो नंबर आहे 88, यानी 888।

0: हर ॿार जा नंढड़ा कदई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

जिन मेहरबानी हाणे हाणे असांखे ज्वाइन कयो आहे या रेडियो ॿुधण शुरू कयो आहे त उन्हनि खे चवंदासीं भली कार। इहो ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम आहे रस रिहाण। रस रिहाण सते वॻे शुरू थींदो आहे ऐं नाई वॻे ताईं जारी रहंदो आहे। अॼु आहे मुंहिंजो अवां सां साथ, मुंहिंजो नालो आहे मीर मुर्कवाडो। मूं पंहिंजो नालो अवां ताईं पहुचायो त अव्हां जा नाला बि मुंहिंजे साम्हूं आहिनि। 88 81 तव्हां जा नाला असां ताईं पहुता। ॻोठ मोहम्मद यूसुफ नोतकाणी खां असांखे वरी सलाम चया आहिनि ज़ीशान मुदसर ऐं मोहम्मद कमील। कमील साईं वॾी महिरबानी। मोहम्मद कमील नोतकाणी साहब अव्हांजो हिकु दफ़ो ॿीहर असां ताईं मैसेज पहुतो आहे ज़ीशान मुदसर ऐं कमील नोतकाणी साहब, अव्हांजी महिरबानी। रस रिहाण में असां अव्हां सां कचहरी कंदा आहियूं, दुनिया जान जूं ख़बरूं कंदा आहियूं, हितां हुतां जूं ख़बरूं बि थींदियूं आहिनि। रिहाण में त रिहाणी थींदी आहे। चौहन कुमार कोहली बि असां सां गॾु आहे कुनरी खां, वरी महिरबानी। संगीता पारस बि हुननि सां गॾु आहे। ॻोठ इस्माइल वाडे खां मुज़फ़र वाडो बि असां सां गॾु आहे। बबलू वाडो बि असां सां गॾु आहे। परिवेश बि असां सां गॾु आहे। हफीज़ वाडो बि असां सां गॾु आहे। नंढड़ी कुबरा बि असां सां गॾु आहे, वरी महिरबानी।

रिश्तनि खे ईअं छॾियो न वञे। रिश्तनि जा बि के आदाब हूंदा आहिनि, बर्दाश्त बि वॾी ॻाल्हि आहे। जेके रिश्ता तॾहिं क़ाइम रहंदा आहिनि जॾहिं माण्हू बर्दाश्त कंदो आहे। कॾहिं कॾहिं पाणी मथे तां वरी बि वेंदो आहे, ॻाल्हि बर्दाश्त खां ॿाहिरि हली वेंदी आहे। पर चङा चवनि था पोइ बि सबर जो दामन कॾहिं मां थमन छॾाइजे। मोहबती ज़िंदगी आहे, नफ़रतूं कंहिं बि कम जूं न आहिनि।

हमेशा जिंदगी में पेज मोहब्बतन के अहमियत रियो नफरत में वरे तो कुछ को कोशिश करो प्यार दियण की कंखे पेंजो करण की कंखे पेंजो करे तो दिसजे आज अवां जे लाइ उर्दू सॉन्ग प्ले कयो आहे माज़ी जो हिकिड़ो यादगार गीत पंहिंजी राय ज़रूर ॾिजो मुनी बेगम जो खूबसूरत आवाज़ अवां जे समातन जो नाम मोटी मिलूं था हिन उर्दू गीत खां पोइ।

शहबाज मल्हा भी असा गड शहबाज सही वही मेहरबानी ये एफ एम आवाजी समूर बुधंदड़न की प्रोग्राम रस रहा

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा पब्लिक की मर्जी जरूर बनेंगे और इस बाद में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
4: वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वाली होड़ ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो तो नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच का वधीक तेजी से अगते वधी रहो है। अल्लाह चाहो ए आवाम की ख्वाहिश हुंदी तो नवा सूबा जरूर ठहंदा। सूबन वारो मामलो थदे या गरम खां घणो अगते आहे। सिंध में छह इंतजामी यूनिट ठहण घुर्जन, असां खां हिकु गवर्नर खसियो वियो, हाणे असांजा छह गवर्नर थींदा। एम क्यू एम बे नवनि सूबनि जो रिंगट बंदि न कयो। एम क्यू एम जे कन्वीनर खालिद मकबूर सिद्दीकी, फारूक सत्तार ऐं ॿियनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त नवनि सूबनि जो क़याम पाकिस्तान जी आइनी ज़रूरत पत आइन वाज़े अफ़हमीअ जो शिकार न रहे। एम क्यू एम जी क़यादत जेका ॿोली ॻाल्हाए थी उहा क़बूल करण जोगी न आहे। उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि जी अक्सरियत पाण खे सिंधी समझे थी। एम क्यू एम लसानी बुनियाद ते विरांगे ऐं नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली नवनि सूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रिए ॾेई चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण एम क्यू एम अॻवाननि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदि अमल ॾींदे चयो त सिंध हुकूमत खे हथरादू कोर्ट थींदड़ एम क्यू एम वारा पहिरियां पंहिंजो मैंडेट साबित कनि। कराची खे भताखोरी ऐं ॿोरी बंद लाशनि जी सियासत एम क्यू एम ॾिनी, हाणे फितने फसाद विगोड़नि ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था।
2: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: आप सुन रहे हैं
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवि خدا پولیو رنز دا قدمونو درولے همشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکچ هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری।
8: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: छा तव्हां जोड़न जी सूर पुठन जी तकलीफ़ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0336-3879-0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331-252-5786
4: जी हा 2-331-5-5-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज
3: अद जो न थियन औरतुन जे मन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GFM

0: एम 90.4 दीनिक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा 3135525786।
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
5: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
6: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوی او د هغې د خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقله مازوری
7: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
9: अमा आशा नोतकाणी थी वधीक मालूम 2347-3241-230
8: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे

0: ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।